सूचना न्यू मनोकामना डेन्टल क्लिनिक सरेर सड़क विभाग ओरालोमा मेन रोड स्थित बुद्ध

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: मध्य पश्चिम यति बेला दिउँसोको 3 बजे।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ रजौरामा निर्माणाधीन घरका पानी ट्याङ्कीमा पर्कन दुई जनाको मृत्यु हरहल मृत्यु हुनामा सल्यान माल्टा घर हुलका हाल तुलसीपुर नौ दोघर निवासी कमल गिरी ओह ठाउँका घनश्याम गिरी र फुल्लका दाङ प्रहरी प्रमुख दीपक श्रेष्ठसे जानकारी दिएर इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायक उपरीक्षक होम बहादुर प्राजुलीको अनुसार कमल ठेकेदार हुइटक घनश्याम मिस्त्री हुइट उक्र दुनुजनसे असिक घर ठेक्का लेखन काम करना कर हुक्र दुनुजन दादू भयन का छावन रलक प्रहरी जना राखल हुक्र पानी ट्याङ्की सेट्रिङ निकार गैरक अवस्थामा निस्सा सकन मृत्यु हुई लग हुई सेकना प्रारम्भिक अनुमान करगिल बा। स्थानीय कनक्से हुक्र पानी ट्याङ्की मरलक्कना थाहा पाइल पाइ पाछ आज बिहान प्रहरी हन खबर आइल रह रातकन हुकनक मोटरसाइकल समेत ओ स्थानमा व्यवहारिसे अवस्थामा रहल रह उ मोटरसाइकल प्रहरी से बिहान केल बरामद करल रह यद्यपि यी विषयमा अनुसन्धान हुइती रहल बा। निर्माण हुइतिर घर मणिराम चन्दक खुलल बाकलसे उहाँ तुलसीपुरको व्यवसाय हुइट। बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 घोरल भीर कैकन चिन्जिना पिपली जंगलको झाडीमा नुकाकन धरक अवस्थामा 11 थान अवैध भरुवा बन्दुक फैला पर्लक जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी डाक्टर एम बहादुर केसी जानकारी दिएर विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी चौकी रामपुर से खरिगलक प्रहरीको टोलीसे जंगलका विभिन्न स्थानमा नुकाकन धरलक अवस्थामा अवैध बन्दुक फैला पर्लक उहाँ जानकारी दिएर प्रहरीसे कालफे लमही नगरपालिका 1 नर्ती स्थित बकेन सामुदायिक बन्दोबस्तै 1 नाल भरुवा बन्दुक बरामद गरल रह। हुलाकी सड़क अन्तर्गत राजपुर गाउँपालिकाका विभिन्न खोल्लोमा पुल निर्माण सम्पन्न हुईसँग स्थानीय दैनिक जनजीवन सहज बन्ती गइरहल। वर्षातका समयमा खोल्लोमा ऐना बाढ़ीको कारण आवत जावत से दुग्ध धुवानी लगायतका काममा स्थानीय कनक्से वर्षौंसे भोग्दैलक समस्या हटल बा। राजपुर गाउँपालिका 3 अन्तर्गत बेला ओ प्रतापपुर गाउँ जोर्ना लसुरी सोम इथान खोल्लोमा 120 मिटर लम्बा ओ 11 मिटर चौडा पुल निर्माण हुइपा छ। हिडदुल कर सहज हल लसुरी सोम इथान खुल्लमन पुल निर्माणका लागि 2077 भदौ 12 गते इलाइट पेसिफिक जेबी काठमाडौँ से 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नकैकन 13,86,00,000 रूपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुइल रह। निर्धारित अवधिमा पुल निर्माणको काम निहुल पाछ पाछक फेरा निर्माण कम्पनी हर 2083 असारसम्म म्याद थप खर्गिल रह। हुलाकी सड़क आयोजना नेपालगंजको इन्जिनियर सुरेश बस्यालसे उहो अवधिभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुलक जानकारी दिएर लसुरी सोमा इथान जस्ता आर्थिक वर्ष 2082-83 राजपुर गाउँपालिका 6 स्थित गंगदी खोल्लोमा 50 मिटर लम्बा ओ 11 मिटर चौडा पुल निर्माण हो रहल। उक्त पुलको निर्माण 2083 असार मसान्त भित्र सेक्ना कैकन 2082 वैशाखमा 6,51,00,000 रूपियाँमा नारायण निर्माण सेवा प्राली से ठेक्का सम्झौता हुइलक छिटी पुल घोषे समय बजो निर्माण उरिलक इन्जिनियर बस्याल बटवा रखल। उहाँका अनुसार राजपुर गाउँपालिका 4 स्थित साल भौरी खुल्लोमा 30 मिटर लम्बा ओ 11 मिटर चौडा पुल निर्माण हो रहल। साल भौरी खुल्लोमा निर्माणका लागि 2082 पुष 25 गते ओमकार नोरयाङ कालीकोट जेबीसे 3,41,00,000 रूपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुइल रह। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीसे असार मसान्त भित्र पुल निर्माणका काम उराकन उरिलक इन्जिनियर बस्यालका काहीबाटिन। सिप सिखी रोजगार सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनी कनामूल नाराका साथ दाङ्क लमहीमा बीज दिने बाँस हस्तकला तथा उद्यमशीलता विकास तालिम शुरू हो रहल। ग्रीन फाउण्डेशन दाङ्क आयोजना तथा डीजीएमओआरआरएन को आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम हुइलक हो। कार्यक्रममा ग्रीन फाउण्डेशन नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सिपमूलक तालिमसे स्थानीय स्रोत ओ सिपको उपयोगकर्ती रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न
सुषमा भट्टवारख वहां से बांस जन्मे हस्तकला आय आर्जन मसे जोरकन समुदाय हन आर्थिक रूप में सबल बनाईला असीम तालीम प्रभावकारी हुना धारणा व्यक्त करल रह ऊ अवसर में सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दांग का अध्यक्ष हरिप्रसाद भूषाल से सामुदायिक वन से जोरकिल उपभोक्ता हन सीप मार्फत आत्मनिर्भर बनाईला आवश्यक रलक बटवारख कार्यक्रम स्थानीय वन महासंघ लमही का अध्यक्ष पूर्ण बहादुर बस्नेत स्थानीय वन महासंघ गढ़ुआ का अध्यक्ष नवराज शर्मा नेपाल पत्रकार महासंघ दांग का उपाध्यक्ष उपेन्द्र बस्नेत ग्रीन फाउंडेशन दांग का उपाध्यक्ष आशा जीसी सचिव जीत बहादुर खड़का तथा ग्रीन फाउंडेशन नेपाल का कार्यक्रम संयोजक दीपक परियार उपस्थिति रहल रह आयोजक अनुसार बीज दिने तालीम में सहभागी होनकला बांस हस्तकला संबंधी व्यवहारिक ज्ञान उत्पादन निर्माण तथा उद्यम संचालन संबंधी सीप प्रदान कर जिनेवा ग्रीन फाउंडेशन नेपाल का केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पांडे का बरपौना एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दांग अध्यक्ष हरिप्रसाद भूषाल विशिष्ट आतिथ्य एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लमही का अध्यक्ष कलसी चौधरी का अध्यक्षता में कार्यक्रम हुईरख हो कार्यक्रम को सहजीकरण ग्रीन फाउंडेशन नेपाल का कर्मचारी गणेश भंडारी से करल रह उठा आज उठारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहणसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहेटु रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
1: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: मध्यपश्चिम चाङ च्याक। यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान। फोन नम्बर 0825182110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि, निरज स्टोर सब्जी मन्डी नजिक र प्रवेश शृङ्गार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
10: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
11: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
12: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 0825362118।